0: तगना फूटस पूत महला पहला।
1: तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाढ़ी, तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तग

कसाई नील बस्त्र पहर होवे परा नील बस्त्र हो पहर होवे परवान मलेश तहन ले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौकी उपर किसे ना जाना देख के चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटावे मत पिटाए होवानिया साडा पिटाए।

ना करे कम आन सके रस जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रस पौड़ी चक्कर लगे चक्करी जे

पौड़ी बड़ी होड़े पर तेरा मर्तबा रंग परंगने का जपन करतबा जिया अंदर जो सब की जान ला सब की तेरे वास तेरा कर पला तेरे करना दुदे तुद कर मान महता तेजे अपने आप जारे सर्व कला पर पूर्ति।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहन गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी ही कश कही न जाई सोडी सृष्ट सकल तारण को पब गुर रामदास को मिली बड़ाई जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछुड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ हर नाम मंत्र दृढ़ाए दा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाद जिस पास बैठिया सोहिया
ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ

तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद निकी खटानी जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा।

अवर जतन कर रहे बहुतेरे। तिन तिल नहीं कीमत जानी, रहा अमृत नाम निर्मोलक हीरा। गुर दीन

हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना।

ब्रह्मा शरण परे की राख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरे करो हाथ दार अच्छा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दय मोहे बचावह। सुखी बसा मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन को आज संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ द मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद्ध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा।
एकै रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उतपुज खान बहुरे रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सिगरे सृष्ट दिखाए अचंभव आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगर दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध करमो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हिब खान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के

तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारणा। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनह संतह शबद धरह प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शबद तित कर सभागै, कर सभागै शबद वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। आनद सुनह वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे।

सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास समाली इहलोक परलोक संग सहाई जात कात मोह रखवाली गोर का बचन बसै जीय नाली जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै पाहि न साकै जाली रहाओ निरतन कौ तान अंधले कौ टेको मात दूध जैसे बाली

दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे जनम पवन्ते नरक पड़न्ते तिनके कोल उदारे कोई न जाने कोई न माने से पर

कवन उपमा देओ कवन बड़ाई, नानक खिन खिन वारे। जैसे हीरा हाथ में तनक सो।

जैसे बार बांधे हुंडी लागत ना पार कशु आगे जाए पाइयत लक्ष्मी अपार जी। जैसे बाट बीज आत सूखना स्वरूप होत बोए से विभेद करे बिरखा विस्तार जी। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन मैं जानिए महात्म गए ही हर द्वार जी। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन।

जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दा साहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु सतनाम।

हार चंदारे बन हार पात रे एहा तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दभ भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बिखठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस जुग मह पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदारथ काच बादर जीत

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एकोत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसिया, गुरु कै जन्म मरण दुख। हो सिफत खुसमी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सचे पात सहा, मल जन्म जन्म दी। सजन सचा पात साहु सिर सहांद, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे। सजन सचा पात साहु सिर सहांद, जिस पास

बिन से जाए परमाई आनंद रूप रवियो सब मद जात कात पेख जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निद पातत पावन गोसाई

हस्त कमल माथे पर धरियं, अलख रूप जी लख्या न जाई, साधक सिद्ध सगल शरनाई।

गोर जहाज खेवट गुरु गोर बिन तरया न कोए गोर प्रसाद प्रभ पाईए गोर बिन मुक्त न होए।

गुर सेवा कर फल लहियं, बंधन जो चरण शरण सुख पावे, परमानंद गुरमुख कहियं।

संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा ए आई है प्रतीत प्रतीत हे आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव दृष्ट कारण करन सतगुर गुरसेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनंग प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन के एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा बिद सहत करन कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्वो बिद वर्णन सतगुर गुरसेव अलख गत जाकी।

0: सब सदका।
1: वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया कट कट बासा, आपे नर आपे फुन्नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, मन है ब्रह्मा दिक रुद्रा दिक, काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाईऐ परमारथ, सत संगत से ती मन खचना, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना।
2: अगम अनंत अनाद आद जस कोए न जाने है, सेव बिरंच धर ध्यान नित है जस बेद बखाने, निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जन जग कियो जन मथुरा रस नारस, श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त हे बसै।
3: गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध समत समारन को, फुन त्रम तुजा फहरंत सदा आग पुंज तरंग।

0: पव सागर पारी उतारन को।
1: निर्मल नाम सुधा परपूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर था अत बड, सो पर सदा सब बिदरत नागर। संत मराल करे कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। काल युग दुरत दूर कर बेको, दर्शन गुरु सगल सुख।

सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसो पुरसो चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावी सा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सो

रहत दान बबेक दान विश्वास दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल